0: अंतर होए ज्ञान प्रकाश उस स्थान का नहीं विनाश
1: नाम रते सदा सह पारम का संग
0: ज्यों जल में जल आए खटाना त्यों ज्योति संग ज्योति।

0: राष्ट्रपति।
1: मानक की टेक वृथि सब जान, देवन को एक है भगवान।
0: जिसके दिए रहे राई, मोहना कृष्णा लागे आए।
1: निर्मल रसना।

0: भक्त नह निरंजन जाने
1: गुरु प्रसाद जानो कृष्णा बुझै
0: साध संग हर हर जस कहत सर्व रोग ते हर जन रहत।

0: सो सेवक जिस दया प्रभ धर नानक सो सेवक सा सा समर
1: अपने जन का प्रताप अपने सेवक की सर पर राख
0: अपने दास को दे वडाई अपने सेवक को नाम जपाई
1: अपने सेवक की आप पत राख ताकि गर्मित कोई न लाख
0: प्रभ के सेवक को कौन पहुंचे प्रभ के सेवक को ऊंचे ऊंचे
1: जो अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दया
0: नीकी कीरी मैं कल राख पसम करे लश्कर कोट लाख मानस जतन करत बो भांत तिसके करत बिरथ जात काहे सोच करे रे प्राणी जप नानक प्रभ अलख बगानी
1: बार बार प्रभ जपिया पी अमृत एह मन तन तृपिया
0: नाम रतन जिन गुरमुख पाया तिसके अवर

कीमत करे ना पाई सद बलहारी सतगुर अपने नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने उस पुरख का

0: संत जिना मिल करो विचार, एक सिमर नाम आधार। कारण कारण सो प्रभु समर्थ, दृढ़ कर गौ नाम हर बथ।
1: भगवंत संत जना का निर्मल मंत,
0: एक आस रखो मन माहे, सर्व रोग नानक मिट जाहे। जिस को नित बाछै मीत, सो सुख साधु संग प्रीत। अनेको पावी रोग न जाए, रोग मिटाए हर अपगत लाए। मन पर बोधा हर कै नाए, जय दिस तावत आवे ठाए। कल ताती ठंडा हर नाओ, सिमर सिमर सदा सुख पाओ।
1: पूरन होयास, भक्त पाया तम प्रगास।
0: चित कर जाए बसै अविनाशी,

0: त्या सरण गुरुदेव अनेको पाप ना छूटन हारे सिमरत शास्त्र वेद बिचारे
1: हर की भगत करो मन लाए मन पंचत नानक फल पाए
0: संग ना चालस तेरा तना तू का लपटावे मूर्ख मना राज रंग माया विस्तार इनते कहो कवन छुटकार जिन दिए तिस बुझे ना बिगाना नाम बसार नानक पशुताना हर की भगत करो मन मीत निर्मल होए तुम्हारो चीत
1: कमल राखो मन माहे जन्म जन्म के किल बिक जाहे
0: आप जपो अबरा नाम जपावो सुनत कहत रहत गत पावो गुण गावत तेरी उतर समैल बिन सजाए हुम मैं बिख फैल शाड स्यांत सगली मना साध संग पावे सच तना सर्व निरंतर एको देख कौ नानक जाके मस्तक लेख एक सके गुण गाओ अनंत मन तन जाप एक भगवंत अनेक बसार एक ते पए एक राध प्राश

0: जब कारे कछु ना दृते ता पापन तब कहते होता
1: जब कारी अपन सुन समाद तब बैर विरोध के संग कमात
0: जब इसका बन चैन ना जापत तब हरक शोक को किसे व्यापत
1: जब अपने आप पार ब्रह्म तब गुरु कहा किसो परमा
0: अपन खेला प्रतीचा नान करने हार न दूचा
1: जब होत प्रभु की वर्तनी तब बाल मुख को किसको गनी
0: जब एके हर अगम अपार तब नरक सुरक को कौन अवतार
1: जब निर्गुण प्रसाद सुपाई तब श्रम प्रभु कृथाई
0: जब आपे आप अपनी ज्योत रे कवन निडर कवन कट डरे
1: अपन चलता अपन हार नानक का करे अगम पार
0: अपना शीस का अपन आसन तय जन्म मरण को कहा विनाशन
1: जब पूर्ण करता प्रभु सोए तब जम की त्रास को सोए
0: जब अवगत अगोचर प्रभु का तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा
1: जब नाथ निरंजन गोचर गाते तब कौन छुटे कौन बंधन बाते
0: अपन आप ही अचरजा नानक अपन रूप आप ही उपरजा
1: जय निर्मल पुरख पुरख पग होता तब मैल कहो क्या तोता
0: जय निरंजन रंकार निर्वाण तै कौन को मान कौन अभमान
1: जय स्वरूप केवल जगदीश तै सोच दुर्लभ को कीस
0: जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावे तै किसे भूख का मंत्र पतावे
1: कर्ण करावन कर्ण हार नानक करते का नाही सुमार
0: जब अपनी शोभा अपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सत पाई
1: जय सर्व कला उपेन प्रवीण तै वेद वेद कहा कीन
0: जब अपन आप और धारे तो सगन अपसगन कहा विचार
1: जय अपन ऊच अपने आप नीरा तै कौन था कौन कहिया चीरा
0: बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी गत जानो आप
1: जय अचल अचल

0: पूरन पूर रहे दयाल सब ऊपर ऊपर होवत कृपाल
1: अपने कर्तव्य जान आप अंतर्जामी रहे व्याप
0: प्रित पाले जीअन बो पात जो जो रचियो सो तिसे त्यात
1: जिस पावत सलय मिलाए प्रकट करे हर गुण गाए
0: मन अंतर विश्वास कर मानिया कर्ण हर नानक

0: सा संग मिल करो आनंद गुण गावो प्रभु परमानंद
1: राम नाम तत करो विचार
0: अमृत वचन हर के

0: राष्ट्रपति
1: संत संग अंतर प्रभ डीठा नाम प्रभु का लाग मीठा
0: सगल सुमगरी एक सकमाहे अनुग्रह नाम नाम दृष्टाहे
1: रौनित अमृत प्रभ का नाम देही मैं इसका विश्राम
0: स्वर्ण

स्वामी सो क्यों मनो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रो हर नाले साचे साहिबा क्या नाही करते रह करता तेरे सब किश है।

परम सन्मान योग गुरु की साजी नवाजी गुरु खालसा साध संगत जी बटभागी हो जुड़ मिल करके सतगुरु जी दे मुबारक चरणा नूं परस रहे दसां पातशाहियां दा हिरदा स्वरूप बाणी के बोहित कलजुगी जीवां नूं तारन हारे ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਸਤਿਗੁਰੂ।

वह करे नानक जन संकीर्ति तरे पार जाति हु हर गुण नाम काम तीन हर हर गुण काम सब उत्तम हर कथा नाम सुनत दरद दुख कथा नाम महिमा संतरत वसा संत प्रताप दुर्धव नसा संत कसम गुट को आगे पाइया संत सेवा नाम तियाइया नाम दुर्गा शवरण हो नानक गुरु नाम पावे जन को श्लोक बह सहस्त्र बह सिमृति पिखी सर्व टटोल पूज स्नाहि हर हर नानक नाम अमोराष्टपति जाप ताप ज्ञान सब त्यान खट शास्त्र समृत वज्ञान योग अभ्यास कर्म त्रम क्रिया सब त्याग वन मध्य क्रिया प्रकार किए वह जतना पुन धन होमे वह रत्ना शरीर कटाय होम कर राति वरने कर वह पाति नहीं तुल राम ना विचार नानक गुरु नाम जप एक बार नव खंड व्रत में फिरा चिर जीव महादास तपिसर थी वह अग्न वाह हुमत प्राण कनक सब है दान अवधि करम कराय वह संजन मार्ग संजमत साधन निम्ख निम्ख कार शरीर कटावे ताओ पी होम बैठ न जावे हर के नाम संसर कशना ही नानक गुरमुख नाम जबत गत पाही मन कामना तीर्थ देह छुटाय गर्भ कुमार न मंत फुटाय सोच करा दन सर रात मन क्यों बैठना तंत जात इस देही का वह साधन कर मंत्री कब न बिखिया टर जात वह देह नीत सुध कह फिका चिपीत मन हर के नाम क्यों हमाऊ नानक नाम उदरी पतत बहमूज बहुत से अन्न जम का पावे आपन के जतन कर त्रिसना त्राप बिहानी को अग्नि हो जाए कोटे उपाय तरगने से जाए छूट स्न हो पाए आर मुहि व्याप हमारा जाल अवर कर तू सगर जम डा नय गोविंद भजन बेन तेल नहीं मान हर कना जब दुख जाय नानक बोले सहज सुभाय सार पदार्थ जी को मांग सहज जनक सिवा लाग जे को अपना दुख मिटावे हर हर नाम रत साध गावे जे को अपने सुबह रो रसा संग होवे शोर है जे को जन्म मरण ते डर सहजन सरण पर जे जन कहो प्रभु तल प्रिया स्नान तक बल बल जस सकल पुरख मह पुरख प्रधान सा संग जा को मटे अभिमान आप सकल जो जान नीचा सौ गणिया सब तु चाह जा को मन हो सकल क्रिया हर हर नाम दिन काट कट गिना मान अपने ती बुरा मिटाना भी खे सक श्रेष्ठ साजना सुख दुख जन सम दृष्टि तनान को पाप न नहीं दे पा निरतान को तन तिरु ना उन थावे को ना तिरा था निमानी का प्रभु तिरु मान सकल कटा का दिवह दान कर्म करावन हार स्वाम सकल कटा के अंतर जामे अपनी गात में तो जान हुआ पिया अपन संग प्रभु राती उमरी उस्तत तुम देव नानक वर्ण जांस को सर्व धर्म श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जब निर्मल कर्म सकल क्रिया में उत्तम क्रिया सा संग दुर्मत माल हिरिया सकल उद्यम है उद्यम करा हर का नाम जप हर जी सदा सकल बान में अमृत बान हर को जासन रसन बुखान सकल थान देव उत्तम था नानक जी काड़वासा हर नाम श्लोक निर्गुणी आर ए सुप्रभ सदा समायल जिनकी आदेश जीत राख नानक निर्विहीन आर अष्टपदी रमैया के गुण चेत पुरा निकुन बोलते कम दृष्टान जिन तू साज सवार सी गारिया कर वगन महजन हो गारिया बार व्यवस था तो जह प्यारा दूध पर जोगन भोजन सुख सूद वृद पया ऊपर साख सैन मुख पिया बैठ कर दैन यह निर्गुण गुण कसुना बुग जाय बक्षरी हो नानक सी जाय जय प्रसाद तारु पुर सुख बस सत प्राथमित बनता संहस जय प्रसाद पी वह सिर तर जला सुख दय पवन पाव कमला जय प्रसाद भोग सब रसा सब समग्र संग साथ बसा दीन हस पाव करण नियतर रसना तिश त्याग और संरचना से दो मूढ़ व्यापी नानकार लिहु प्रव्यापी

भी हुआ बहुत का विश्वास न हुआ। जिसके वास्तव तहा कह रखे प्रभु की आज्ञा माना माथ उस चौकन कर नानक साहिब सदा दया रंग पैत सर पर्वत जान नियत बिरख की छाया सिंह रंग लावे ऊह बिन सहमर पछतावे ज्योति ससु चालन आलौट रही तहां दंदारू बटाऊ सिंह जलावे नीह ता को हाथ नावे की मन है।

जाय। गोविंद भजन बिन प्रीति सब काम जो कर बन के नरार्थ दाम तन तन ते जान जिह काटू बस हर नाम नन तक बल बल जाऊ रह और कश और कुमावत मन प्रीत मुखम गण लावत।

गति कर प्रसाद गुरुदेव वाष्णुपदी जिह प्रसाद शति अमृत खाही ठाकुर को रखमन वाहि जी प्रसाद सुगंध तन लावह सिमरत परम गद पावह जिह प्रसाद बस सुख मंदिर सकमनंद्र जय प्रसाद गृह संग सुख बसनाथ पैर सिमरत सरसनाथ जय प्रसाद रंग राह

ले बोला वह दुसराम सुनि ही जिह प्रसाद तेरा बोला रह तो मांस उपावे हर हर जह कह तुझे प्रसाद सगर छद्र ठाके मन शरण पर ठाकुर प्रभु ताके जो प्रसाद तुझ कुन।

जपै जप सुए आप जपै जप सुनाउ आप गावै सो हर गुण गाऊ प्रभु कृपा तुम कोई प्रगाह प्रभु दया ते गुण विगाह प्रभु सो प्रसन्न बसा मन सो प्रभु दया ते मा तू तुम होई सर्वन धन प्राप्त तेरी माया आप कछु न करु हो लया जित जित लाव तित लग हर नाथ नानक न कह कछु न हाथ सलोक अगम अगत पार प्रथम सोए जो जो कह समुक्ता समीता नानक बिनवंता साध जन के अचरज कथा अष्टपदी साध कसंग मुख गुजर होत सा संवर सगड़ी होत

ब्रह्म ज्ञान कह मित्र सत संवार ब्रह्म ज्ञान कना है अभिमार ब्रह्म ज्ञान ऊचते ऊचा मन अपने है शब्द नीचा ब्रह्म ज्ञान से जन पाए नानक जन प्रभाव करी ब्रह्म ज्ञान सकल गिरी नाया तुम रह ब्रह्म ज्ञान चींदा ब्रह्म ज्ञान के सब उपरमाया ब्रह्म ज्ञान ते कह बुरा न पाया ब्रह्म ज्ञान सदा संदर्श ब्रह्म ज्ञान के दृष्ट अमृत वर्ष ब्रह्म ज्ञान बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञान के निर्मल जुगता

का उदयस जाग जीवा हर कथा हरता बसा सु पंडित पे जो नाव वेद प्राण समृत पूजा मूर सुख मह जन स्थूल जहरण कुदेव दीस नानक पंडित का सदा दीस बीज मंत्र सर्व ज्ञान जहर

तहन वियोग तैस स्वर्ण तैस विस्मट तस अमृत तैह विकट तस मा तस अवमा तस रंग तैसारा जान जोर तय सहयुग नानक पुर कह जाय जीवन पार गुण किसकले ठाव जित जित कर राख तैसा तन लाऊ आप कन कराम जोग प्रभाव सुन खोग पसर आप तरंग लखन जाहि पार ब्रह्म के रंग।

कई कोट राज रह भोगी, कई कोट पंख सर्पय पाय, कई कोट पाथर बिरख ने बजाय, कई कोट पावन पाणी बाय संद्र, कई कोट दीश भूमंडल, कई कोट शशि अर सूर नखिया तर, कई कोट दीव नारंदर सर शतर, सगल समग्री अपना सूर तार, नरक जह जह पाव तिस तेह नह तार, कई कोट राज सदाम सातक, कई कोट वीर प्राण सिमरत अर सासत, कई कोट की रतन समर्थ, कई कोट नाना प्रकार जन, कई कोट की चेर जीवे, कई कोट गिरि मेर स्वर्ण थीवे, कई कोट जाक नर पिशाच, कई कोट भूत प्रियत शुक्र मृगाच, सब तिन गिराय सब होते दूर, नानका फलिपत रहे अपार पूर, कई कोट पाताल के वह, कई कोट नर स्वर्ग निवास, कई कोट जन्म है जीव हमार है, कई कोट भजन फिर है, कई कोट बैठ भी खाही, कई कोट काले थक पाही, कई कोट के धनवंत, कई कोट माया मह चिंत, जह जह पांडा तह तह राख, नानक साहब जी प्रभु कहा थी।

गुण गावे है, तुमरा सुख सहज सुभावे है। अपने जन कर सा सा संवार दान के वे परमेश्वर के प्यारे स्वरूप करण कारण प्रभु कह दूसरा ना ही कोई दान के बल हार न जाल धर्म शीला सोया पदि करण करावन करना जोग जो दह पावे सोई होग खंड में था उठा पुनरंत नहीं किस पारा वारा हुक्म तार तार रहवे हुक्म बजा हुक्म समावे हुक्म उच नीच व्यवहार हुक्म यान करंग प्रकार।

अपार मान महे आप मन अपने वाह नानक गुंद कहना जाय सात सात सात वरा स्वामी गुरु प्रसाद कन बखियन साच साच साच हो गिना कूट मध्य कना बिरला गिना परा परा परा तर रूप सुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल त्रिपाणी कट कट सुन श्रवण बखियाणी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जप नानक मारपुर श्लोक संत सरन जो जन पर सो जन उदरन हार संत गिनंदा नानक बहर बहर अवतार अष्टपदि संत का दुख नार जागट संत का दुख जम तन छोटा संत का दुख न सुख सब जाय संत का दुख न नरक में पाय संत का दुख न मात विमल संत का दुख सबा दिनियन संत के हाथ पाव रखा न कोई संत का दुख न थान प्रस्त हुए संत कृपाल कृपा जी कर नानक संत संग नंद को पी तारा संत के दुख ते मुख पावे संत का दुख काग जो लवे संत का दुख न सर्व जोन पाए संत का दुख न त्रिगत जोन कर्माए संत का दुख न त्रसनामा जलाए संत का दुख सब को शालाए संत का दुख न तेज सब जाए संत का दुख न नीच नीचाए संत दुख का था को नाहि नन संत पावे ता हुए पीगत पाही संत का नंद को महादताई संत का नंद के खेन टिकन न पाई।

त्याग संत का दुख महाअहंकार संत का दुख सदा विकार संत का दुख जन्म मरा संत दुख ना सोते टारा संत का दुख जो ना ठा नान संत पावन

किया, जैसा करता है कथ किया। अपना खेल आप करण यार, दूसर कौन कहे विचार, जिसन कृपा करत सपना दी बड़ पागी, नानक जान सी सरोक तजह सयान को सरजन सिमरह हर हर आई का सहर मन रखह, नानक दुख परम पाव जाय पद मान, टेक वृत्ति सब जान जीवन पाई का भगवान, जिसका दिया रह आगाई बहन दर्शन ला गया, मारा रखाई कुआ मान कह कृष्णा गुज सब का नाम रखंड प्रोए, सिमर सिमर सिमर प्रासो नानक विघ्न लागा कोई, उसद मन कर निरंकार कर मन मेरे साथ व्यवहार, निर्मल रसन अमृत भी सदा सुहेला कर ली जियो, नैन पी कर ठाकुर करंग सा संग बिन सा सब संग करन चरम वार, गोविंद मिठे पाव जब यार बिंद कर, हर कर मन श्रवण हर कथा हर दर्ग नान पूजन मथा बुड़ पागी दिए, जन जग माही सदा सदा हर गुण गाहे, राम नाम जो करे विचार से धनवंत कन्य संसार, मन तन मुख बोले हर मुखी सदा सदा जान दी सुखी, एको एक एक पछान तो जो सोजी जान, राम संग जिसका मन मानिया, नानक तिन्ह निरंजन जानिया, गुरु प्रसाद अपना सो जाय तुह जन दृष्णा बो जाय, सा संग हर हर जह कह तो सर्व रोग त्यो हर जन रहत, आन दिन कीर्तन क्यों रखिया, अनुग्रह तुम्हें

कृतिर जयसा सात दृष्टाया कर्मया सोदत सोदत सोद सीजया गुरु प्रसाद तथा पूजया जब देखा तब सब गुरु नान सो सुखम सोय सो नह जन्म।

कलबिन कह गावै। जे को हुए बह दातार तिस दीन हार जानन गावार, जिस गुरुप्रसाद उठा रोग नान सोजन सदा, रोग ज्यों मंत्र गाव थम थमन त्यों गुर का सौद मन हर थमन, ज्यों पा खान नाव चढ़ तरह प्राणी गुर चरण लगत नहीं तरह, ज्यों अंधकार दीपक प्रकाश गुर दर्शन दिहन हुए विकास, ज्यों महा उद्यान महावार उपाय त्यों साधु संग मिल ज्योत प्रगटावै। तेन संतन की बात छा दूर, नानक हलवा चापुर मन मूर्ख काहे बिल लाई, पर लिख कर लिखे पाई।

शासन करता बुलता करा हृदय करा तुम्हारा सोय जतन कर बहपा तो तुझके कर तो व्यर्थ जा तुम्हारा न रखे बन को सरु जी न कर रखे सोय कर सोच कर हरि प्राण जपना प्रभु रख बड़ाणी बार बार बार प्रभु जब जब अमृत हुमा तंत्र अनावरत जिन गुरु पाया तो सके शावर नहीं दृष्टाया नाम तन नाम रूप रंग नाम सुख नाम का सांख्य नाम रख जो जंत्र बताने मंत्र नाम है नाम समाने उठत बैठत सुबत नाम कह नानक जन का सदका।

सदर गुना हूँ सहज सुभाई नन गुन गाय गुन गायत्री उतर समैर बिन सजा हूँ मैं बिकैल तू ही अचिंत बसाय सुखनायल तू सह सुग्रास हर नाम संभाल छाण से हम सगरी मना सह सिंह पावे सज तना कर पूंजी संच कर व्यव हरि हसुख दुर्ग जयकार सर्व निरंतरे को देख कह नानक जग मस्तक देखे को जापे को सलाही एक सिमरे को मनाही किसके गुण गाव अनंत मंत जावे एक भगवान दे को एक एक हरिया पूर्ण पूरे हो प्रव्याप अनक बेस्थारी एक ते भय करात प्राशित के मंत्र अंतरिक प्रवराता गुरु प्रसाद नानक के जाता श्लोक फिरत फिरत प्रवाया पर्याद शरण आय नानक प्रभियंती अपनी भक्ति लाय अष्टपति जाच के जान जाच प्रवदान कर कृपा दिव हरनाय मु साजन की मांगा तुर पार ब्रह्म सरदा पुर सदा सदा प्रभु गुण गाय सा प्रभु तुम ते आवा

Teh kawan kemarin karena kemarin जह स्वरूप केवल जगदीश है तह शाल शेदर लगत कहु कीस है जह जो स्वरूप जो संग समावे तह कह भूकम त्रवतावे कर्म करावन करने आनान करती का नाही सुमार जावे अपने शोभा अपने संग बनाई तब कौन माए बा मित्र सुत पाए जह सर्व कला या वह परवीन तह वेद देव कह कुचीन जब अपना आप उतार तो सगन सगन कह विचार जह अपन ऊच अपना नीरा तह कौन ठाकुर कौन कहिया चीरा विस्मन विस्मर विस्मर नान कब निगत जान हुआ जहाँ चाले अशेद अप्रेत समाया।

खीर खिलावे। बीस मार था अगणत अतुल जो बुलाव त्यो नानक दाह बोला श्लोक जी जंत के ठाकुर आप वर्तनार नानकी को पसरिया दूजा कह दृष्टा राष्ट्रपति आप कथया उस तुन ने हार आप ही का विस्तार जान पर सृष्टि उपाय आप न पाण ले समाई तुम ते बिन नहीं किशो होया आपन सूत सब जगत पुरे जा कुप्रव जीव आप जाय सच नाम सुजन पाए सो सम दर्शित तत कबीर नानक सब श्रेष्ठ कह जीता जी अजंत्र सब ताके हाथ दीन दयाल अनाथ कुनाथ जिस राखत पुए ना मारे सो मुए जह मन।

सदा बरहर पूरन रह पूरे के दयार सब प्रोध कृपाल अपने कर्तव्य जाने आप अंतर जम रहे व्याप प्रात पाले जीवन बह पात जो जो रचे सुरत सह दिया तो जिस पावत हले मिलाए भगत करे हर के गुण गाय मान अंतर विश्वास कर मान्या करन हर नानक के जाने जन राग हरि कहनाई इस गया सना बिरति जा सेवक सेवा बान आए हुकुम बूझ

भोले बुलाए दूर दर्द मंदिर पाव जाए। साच वा पार करहु वा पार दरगन वह केव तुम्हारी काटे रखो मन वाह नानक बहर न आव है जाहे देह दे दूर कहाँ को जाए उबरा रखन आरत आई। निरपाव जब सगल पाव मिटा प्रभु कृपा दे प्राणी छुटा। जेस प्रभु राख देह न दुख नाम जब मन अवध सुख है चिंता जाय मिट अहंकार देह जन को कुए न पहचनार। सिर ऊपर ठाठा गुर सूरा नानक ताक कार्य पूरा मात पूरी अमृत जाग दृहत दर्शन पीखत उदर दस स्त चरण कमल जाके अनूप सब दर्शन सुन रहा रूप।

निरंजन होए। जे को मन जाने मन कोए, मन्ने मार्ग ठाक न पाए, मन्ने पास्यो प्रगट जाए, मन्ने माग न चले पंथ, मन्ने धर्म से तीसन बंध। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन्ने पावह मोख द्वार, मन्ने परवार साधार, मन्ने तरह तारे गुरसिख, मन्ने नानक पवह न भिख। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। पंच प्रवान, पंच प्रधान, पंचे पावह दर गहमान, पंचे सो है दर राजान, पंचा का गुर एक ध्यान। जे को कह करे विचार, करते कह करणे नाहीं सुमार, तोल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रख्या जिन सूत। जे को बुझे होवे सचियार, तबले ऊपर केता पार।

निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख कह है सिरभार होए अखरी नाम अखरी सालाह अखरी ज्ञान गीत गुणगाह अखरी लिखण बोलण बाण अखरा सिर संजोग वखाण जिन एह लिखे तिस सरनाहे जे फरमाए तिव।

आसन लोए लोए भंडार जो किश पाया सो एक वार कर कर वेखै सिरजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेस दिसै आदेस आदे अनिल अनादे नाहत जुग जुग एको वेस एक दूजी पहो लख हो है लख हो वह लख वीस लख लख गेड़ा आखी है एक नाम जगदीस ए त्राहै पद पौड़ियां चढ़िया होए इक्कीस सुन गल्ला आकाश की कीटा आई रीस नानक नदरी पाईऐ कूड़ी कूड़ै ठीस आखण जोर चुपै नह जोर जोर न मंगण दे न जोर जोर न जीवन मरण नह जोर जोर न राजमाल मन सोर जोर न सुरती ज्ञान विचार जोर न जुगती छुटै संसार जिस हथ जोर कर वेखै सोए नानक उत्तम नीच न कोए राती रुती थिती वार पवन पाणी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जीव जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथै सोहन पंच प्रवान नदरी करम पवै निसान कच पकाई उथै पाए नानक गया जापै जाए धर्म खंड का एहो धर्म ज्ञान खंड का आखो कर्म केते पवन पाणी वै संतर केते काण महेश केते बरमे घाट घड़ी है रूप रंग के वेश

हथियार पाओ खला अगन तपताओ भांडा पाओ अमृत तित ढाल घड़िए शब्द सची टकसाल जिनको नदर कर्म तिनकार नानक नदरी नदर निहाल सलोक।

पूजन तहयो कूर क्रिया और ज्यो सब ही जग श्री भगवान को भेद ना पायो। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो बाज बेनती चौ पई अमरी करो हाथ दै रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रत पारा। अमरे दुख सबै तुम काब हो आफा दै मोहे बचाव हो सुखी बसै मोरो परिवारा सेवक सिख सबै करतारा। मोर रक्षा निज कर दै करै सब बैरन कौ आज संगरै पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई अवरना त्याऊँ जो बर चाहूँ सो तुम ते पाऊँ। सेवक सिख हमारे तारिय है चुन चुन सत्र हमारे मारिय है आफा तै मुझे उबरिय मरण काल का त्रास निवरय हुजो सदा हमारे पच्छा श्री अस तुज जू करय हो रक्षा। राख लेहो महे राखण हारे साहेब संसहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दस कंता काल पाए ब्रह्मा बवतरा काल पाए शिव जू अवतरा। काल पाए कर विसन प्रकाशा सकल काल का किया तमासा जमन काल जोगी शिव कियो वेद राय ब्रह्मा जू थियो जमन काल सब लोक सवारा नमस्कार है तहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो देव दै जशन पजायो आद अंत एकै अवतारा सोई गुरु समझो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जने आप सवारी सिवकण को सब गुण सुख दियो सत्रण को पल मोह बद कियो घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर स्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने घट घट के पढ़ पढ़ की जाने। जब युद्ध करक करा करतारा प्रजा धरत तब देह अपारा जब या करक करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह धर सब हूँ। जेते बदन सृष्ट सब धार है आप अपनी बूझ विचार है तुम सब ही ते रहत निरालम जानत वेद भेद अरालम निरंकार निरभकार निरलंब आदि अनिल अनादि असंभ। ताका मूढ़ उचारत भेदा जाको भेव न पावत भेदा ताको कर पाहण अनुमानत महामूढ़ कछ भेद न जानत महादेव कौ कहत सदा शिव निरंकार का चीनत नह पिव। आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तोहे तेती तुमरा लखा न जाए पसारा कह बिद सजा प्रथम संसारा एकै रूप अनूप स्वरूपा रंग भयो राव कही भूपा। अंडा जेरे से तजकीनी उत भुज खान बहुर रच दीनी कहूँ पूरा राजा है बैठा कहूँ सिम

भयो संकर कैठा सिगरी सिर दिखाय अचम भव आजुगा स्वरूप सियम भव। अब रक्षा मेरी तुम करो सिखो बार असिख संगरो दुष्ट जितै उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण काता। जे अस्तुति तव सरणी परे तिनके दुष्ट दुखत हुआ मरे पुरख जमन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे। जो काल को एक बार त्याय है ताके काल निकट न है ऐ है रक्षा हुए ता है सब काला दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला। कृपा दृष्ट तन जह निहर हो ताके ताप तनक मह हर हो रिद्ध सिद्ध कर्म सब होई दुष्ट शाह श्वै सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास्ते ताहे उबारा जिन नर नाम तिहारो कहा दारिद दुष्ट दोख ते रहा। खड़ग केत मैं शरण तिहारी आप हाथ दै लिहो बारी सर्व ठौर मोह सहाई दुष्ट दोख ते लिहो बचाई। कृपा करी हम पार जग माता ग्रंथ करा पूरण शुभ राता किलविक सकल देह को हरता दुष्ट दोखियन को शय करता। श्री अस्तुज जप भय दयाला पूरण करा ग्रंथ तत्काला मन बांछत फल पावै सोई दुख न तिसै व्यापत कोई। अडिल सुनै गुंग जो यह सो रसना पावई सुनै मूढ़ चित लाए चतुरता आवई। दुख दर्द पाओ निपना तिन्नर के रह हो जो या की एक बार चौपई को कह चौपई। संबत सत्रह सहस पणिजय अर्थ सहस पुण तीन कहिजय भाद्रव सुधी अष्टमी रविवारा तीर स्तुत्रव ग्रंथ सुधारा सवैया। पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न मान्यो। सिमृत शास्त्र वेद सबै वह भेद कहें हम एक न जान्यो। श्री अस्पान कृपा तुमरी कर मैं न कहो सब तुह तो बखान्यो दोहरा।

कर्म सबे बेकारी आसा मनसा बंध नहीं पाए। गुरु नानक देव पातशाह महाराज अज के हुक्मनामे दे विच बख्शिश कर रहे हैं। पुराना समा सी दुनिया के लोग तीर्थां ते इशनान करने, पुन दान करने, धार्मिक कार्य करते सन। गुरु नानक देव महाराज जी कहते ने, हे इंसान, ठीक है धार्मिक कर्म करने चाहिए ने, करो, पर धार्मिक कर्म करने, तीर्थां ते इशनान करने, पुन दान करने, ये सारे कर्म करते समय मन दे विच किहड़े ख्याल चल रहे हैं। हे इंसान, जिहड़ियां तेरे मन दे विच आसावां चलदियां हन, मनसावां चलदियां हन, मन दे विच जिहड़े विचार चल रहे हैं, ये धार्मिक कर्मां दे विच उह बंधन बन गए। भाव की बैठे गुरु घर हाँ, बाणी दा जाप चल रहा है, सिमरन चल रहा है, मन दे विच की चल रहा है? मन दे विच ये चल रहा है, मेरी ये आस है, मेरी ये मनसा है, आ पूरा हो जाए, आ पूरा हो जाए। मन दे जिहड़े ख्याल हन, गुरु नानक देव महाराज जी कहिंदे ने, हे इंसान, परमात्मा दे मार्ग दे उत्ते चल रहा है, अपने मन दियां आसावां मनसां दा ख्याल कर लै, वेखी।

पाखंड मैल न चुकई भाई अंतर मैल विकारी इन विद डूबे माकुरी भाई उंडी सिर कै पारी। हुण पातशाह जी ने एक उदाहरण दिती है केड़ी। पातशाह कहंदे ने शास्त्र वेद पढ़ रहा है ज्ञान दियां पुस्तकां पढ़ रहा है पर कर्म सारे संसारी कर रहा है। पहरावा धार्मिक है कर्म संसारी है। पातशाह कहंदे ने पखंड है पाखंड मैल ना चूके भाई ये पखंड जेड़े तू कर रहा है तेरे जेड़े मन नू मैल लगी हुई है ना वो मैल दूर नहीं होनी अंतर मैल विकारी। बड़े गहरे शब्द ने धन गुरु नानक देव महाराज जी दे। पातशाह कहंदे ने इत्थे शास्त्र वेद पढ़न तो की भाव है उस वेले दे जेड़े लोग सन वो शास्त्र वेदां दा पाठ करिया करदे सन वेद पढ़ने शास्त्र पढ़ने ये मन्या जांदा सी जेड़ा हिरदा वेदां दा पाठ करदा है ये धार्मिक कर्म है। अज दा समा की है अज हिरदा बाणी पढ़दा है पंडित वेद पढ़ते ने मुसलमान धर्म वाले कुरान पढ़ते ने गुरु नानक देव महाराज जी का उपदेश सारे वर्णा नूं ही सांझा है। हे हिंदू धर्म वाले हे मुसलमान धर्म वाले हे गुरु देव सिखो बाणी पढ़ते हो सिमरन करते हो पर जे अंदर मैल है ना विकार है फिर गुरु दे चरणा विच प्रवान नहीं होंगे। इन बिद डूबी माकुरी भाई ऊंडी सिर कै भारी। मकड़ी की उदाहरण दे के महाराज कहिंदे ने जिवें मकड़ी अपना जाला बुणदी है तो आप ही जाले च फस जांदी है। दुरमत घणी विगूती पाई दूजे पाए खुआई

मन वसया चूका भेख। अगलियां पंक्तियां विच पातशाह फुरमान करदे ने जिन्हां नूं गुरु मिल पैंदा है, मन दे विच गुरु दे प्रति गुरु दा भै भी पैदा हो जांदा है। नानक जिन मन भौ ते ना मन भाओ। गुरु दे चरणां विच आ के गुरु दा डर मन दे विच पैदा हो गया, फिर तू गुरु दे दसे हुए मार्ग ते चलेगा। पातशाह कहिंदे ने फिर जन्म मरण दे गेट दे विचों मुक्त हो जाएगा। मज्जन दान चंगियाईयां भाई दर गए नाम वसे। तीर्थां ते इशनान करना, पुन दान करने, चंगे कर्म करने, असल विच ये सब कुछ की है, परमात्मा दा नाम ही है। तीर्थ नावण जाओ, तीर्थ नाम है। गुर अंकस जिन नाम दृढ़ाया भाई मन वसया चूखा भेख। अंकस कहिंदे ने जिहड़ा हाथी दा कुंडा, पातशाह कहिंदे ने परमात्मा दा नाम ही हाथी दा कुंडा है। जिधर नाम गुरु तैनू उपदेश बख्शिश कर रहा है, अपने मन नू उस पासे लगा लै। इहो तन हाट सराफ को भाई वखर नाम अपार, इह वखर व्यापारी सो दृढ़ भाई गुर शब्द करे विचार। धन व्यापारी नानका भाई मेल करे बापा। आखिरी पंक्तियां विच पातशाह फुरमान करते हैं। एक दुकानदार की उदाहरण दिती है पातशाह जी ने, इहो तन हाट सराफ को भाई। पातशाह कहिंदे ने परमात्मा का नाम जिवें एक दुकानदार है अपनी दुकान ते सौदा पाई रखदा है, इस तरह हिरदे दे विच परमात्मा दा नाम पा लै, परमात्मा दे नाम दा व्यापार कर लै। इहो वखर व्यापारी सो दृढ़ भाई गुर शब्द करे विचार। गुरु दे शब्द नूं, गुरु दे शब्द दी विचार नूं हिरदे विच वसा लै। धन व्यापारी नानका भाई मेल करे बापा। आखिरी पंक्तियां विच पातशाह फुरमान करदे ने ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਧੰਨ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ? ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ। ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਬੰਧਨੀ ਭਾਈ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਬੰਧਕਾਰੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹਿਰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 4:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੰਗਤੀ ਜਾਪ ਹੋਣਗੇ। ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਹਨ ਜੀ। ਆਓ ਹੁਣ ਭਾਈ ਹਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਮੂਹ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मण सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सर्व विचार सच्चा तेरा मृष्टा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुदा खै लख करोड़ सच्चे सब तान सच्चे सब जोर सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच त्याय न स

सच्चे ना। दरबाट पर खर्च मंगा जब देता खाहे, दीवाने को कल में कहा तुम मिल दर लेखा पी।

पुन असलेखी की पई वारी ए पैरुगी पंचो नारी पंचम हरख दे साख सुनावे है बंगालम मद माधव गावे है ललत बिलावल गाव ही अपनी अपनी पात अष्टपुत्र भैरव के गावे है गायन पातर द्वितीया माल कौशक आलाप है संग रागनी पांचो थाप है गोण करी अर देव गंधारी गंधारी सिहुति उचारी तनासरी ए पांचो गाई मार ला कौशक संग लाई मारू मस्तांग मेवारा बरबल चांड कौशक उवहारा खाओ खट आओ भौरा नद गाय अष्टमाल कौशक संग लाए पुन आयो हिंडोल पंच नार संग अष्ट सुत उठ तान कलोल गायन तार मिलावही ते लंगी देव करी आई बसंती संदूर सुहाई सरस अहिरी लै पार जा संग लाई पांचो आर जा सुरमानंद पास कर आए जंदर बिंब मंगलन सुहाए सरस बान ओ आहे बिनोदा गावे सरस बसंत कमो

मित पैजै मित विगसै जिस मित की पैज पावै तुसी विचार देखो हो पुत भाई हर सतगुरु पैनावै सतगुरु प्रतख हुंदै बहराज आप टिकाया सब सिख बंदप पुत भाई रामदास पैरी पाया।

0: हर का नाम जन को मुक्त रूप, हर के नाम जन को तृप्त भुगत।
1: हर का नाम जन का रूप रंग, हर का नाम जप्त कब परै न भंग।
0: हर का नाम जन की वडियाई, हर के नाम जन सो पापाई।
1: हर का नाम जन को भोग जोग, हर नाम जप्त

0: दीना
1: हर हर जन के ओट सतानी हर प्रताप जन अवर न जानी
0: ओत ओत जन हर हर राते सुन समाध नाम रस माते
1: आठ पैर जन हर हर जपे हर का पद पद नहीं छपे
0: हर की

0: गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने।
1: हर का नाम जाप दुख जाए, नानक बोले सह सुभाए।
0: चार पदार्थ जे को मागे, सात जना की सेवा लागे।
1: जे को अपना दुख मिटावे, हर नाम हृदय सदगावे।
0: जे को अपनी शोभा लोरे, साध संगे होमे छोरे।
1: जे को जन्म मरण ते डरे, सात जना की सरनी परे।
0: जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा, नानक ताके बल बल जासा।
1: सगल पुरख में पुरख प्रदान, साध संग जाका मिटे अभिमान।
0: आपस को जो जाने नीचे, सोउ गणिये सब ते ऊंचा।
1: जाका मन होए सगल की रीना, हर हर नाम तिन खट खट तीना।
0: मने अपने ते बुरा मिटाना, पेखे सगल श्रेष्ठ साजना।
1: शुभ दो

0: कहां बशारत पूजे डोरा निष्कय तो समझे पूरा
1: कहां विष्णु पद गावे गंग जतन करे तो ईश्वर भंग
0: है पिंगल पर्वत पर पवन नहीं होत हुआ उस गवन
1: सरकार करुणा में दीन बेटी करे नानक तुम्हारी कृपा करे
0: संग सहाय सो आवे न चीत जो बैराई ता सो प्रीत
1: बलवा के पितर बस आनंद के माया रंग रस
0: दृढ़ कर मने मने प्रतीत काल ना आवे मुड़े चीत
1: भैर क्रोध काम क्रोध मोह छूट विकार महालोभ क्रोध
0: यहू जुगत बिहाने कई जन्म नानक राख लियो अपन कर कर्म
1: उठा कर तुम पैदास जियो पिंड सब तेरी रास
0: मात पिता हम बारक तेरे तुमरी कृपा में सुख गनेरे
1: कोई न जाने तुमरा अंत ऊंचे ते ऊंचा भगवंत
0: सगल समग्री तुमरे

0: साध के संगमुख उजल होत साध संगमल सगली खोत
1: साध के संग मिटे अभिमान साध के संग पलट सुज्ञान
0: साध के संग बुझै प्रभ नेरा साध संग सब होत निबेरा
1: साध के संग पाए नाम रतन साध के संग एक ऊपर जतन
0: साध की महिमा बरने कौन पुरानी नानक साध की शोभा प्रभ माहे समानी
1: साध के संग रोचक मिल है साध के संग सदा प्रफुल्ल है
0: साध के संग आवे बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा
1: साध संग हुए सब की रेन साध के संग मनोहर बैन
0: साध के संग न कब कतहु तावे साध संग स्थित मन पावे
1: साध के संग माया ते पिन साध संग नान प्रभु सो प्रसन्न
0: साध संग दुश्मन सब मीत साधु के संग महापुनीत
1: साध संग किसनी बैर साध के संग न बिगा पैर
0: साध के संग ना ही को मंदा साध संग जाने परमानंदा
1: साध के संग नहीं होता साध के संग तजे सब
0: अपने जाने साध बढ़ाए नानक साध प्रभु बने आई
1: साध के संग न कबू पावे साध के संग सदा सुख पावे
0: साध संग बस्त अगोचर लहे साधु के संग अजर सहे
1: साध के संग बसे थान उचे साधु के संग महल पहुंचे
0: साध के संग दृढ़े सब धर्म साध के संग केवल पार ब्रह्म
1: साध के संग पाए नाम निधान नानक साधु के कुर्बान
0: साध के संग सब कुल उदार साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तार है
1: साधु के संग सोतन पावे जिस तन ते सब को बसावे
0: साध संग धर्म राय करे सेवा साध के संग शोभा सुरदेवा
1: साधु के संग पाप पलायन साध संग अमृत गुण गायन
0: साध के संग सर्व थान गम नानक साध के संग सफल जन्म
1: साध के संग नहीं कचकार दर्शन पेट तो होत निहाल
0: साध के संग खत हरे साध के संग तर्क पर हरे
1: साध के संग यहाँ मासुहिला साध संग बिचर धर मिला
0: जो इच्छे सो ई फल पावे साध के संग न बिरथा जावे
1: पार हम साध रे दसे नान कुतरे साध सुन रसे
0: साध के संग सुनो हर ना हो साध

0: जैसे राज रंको लागे तुल्पवान
1: ब्रह्म ज्ञानी कहती एक जो सुधा को खोदे को चंदन लेप
0: ब्रह्म ज्ञानी का एक नाओ नानक जो पावक का सह स्वभाव
1: ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे नैन लागे जला
0: ब्रह्म ज्ञानी के मन होए प्रगास जैसे तरु पर आकाश
1: ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सत्र समान ब्रह्म ज्ञानी के नहीं अपमान
0: ब्रह्म ज्ञानी उच्चते उच्चा मन अपने है सबते नीचा
1: ब्रह्म ज्ञानी से जन पहे नान जिन प्रव्या करे
0: ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना तमरस ब्रह्म ज्ञानी चीना
1: ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया ब्रह्म ज्ञानी ते कछुरा न पया
0: ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी के देष्ट अमृत वर्षी।

0: ज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्म ज्ञानी अहम बुद्ध त्यागत।
1: ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी के कर सदानंद।
0: ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, ब्रह्म नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश।
1: ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का देता, ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता।
0: ब्रह्म ज्ञानी के होए चिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत।
1: ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का वट प्रताप।
0: ब्रह्म ज्ञानी का दर्श गढ़ पागी पाइये, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइये।
1: ब्रह्म ज्ञानी को खोजे मेष, नानक ब्रह्म ज्ञानी।